सुप्रभात। बस 28.3 मीटर्स लगे 1304 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी नाम भोज केंद्र में प्रसारण आप सुन रहे हो। आज शुक्रवार आषाढ़ दिनांक 5 शक संवत 1945 लगे 26 जून 2026 अत्यारे सवार में 5:58:30 थी। સાથે શરૂ કરીએ આજની પ્રાતઃ સભાના કાર્યક્રમો શરણીયના મંગળ સ્વરથી।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बना रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। उस सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन

0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: चोखू हृदय पठन करी रहा है हर्षा ठक्कर।
2: દરેક માનવીની ઈચ્છા હોય છે કે તેને સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અને તે શાંતિ મેળવવા માટે અનેક પ્રકારના સાધનો કરતા હોય છે। કોઈ નિત્ય મંદિરે દર્શન કરવા જાય છે, કોઈ દાન કરે છે, કોઈ ઉપવાસ કરીને તપ કરે છે, કોઈ ધ્યાન કરે છે, કોઈ શાસ્ત્રોનું પઠન કરે છે। ખરેખર આ બધી પ્રવૃત્તિ સારી જ છે અને તે કરવી જ જોઈએ, પરંતુ ઘણી વખત એવું બને છે કે આ બધી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ વર્ષો સુધી કરવા છતાં પણ શાશ્વત સુખનો અનુભવ થતો નથી, હૃદયમાં શાંતિનો અહેસાસ થતો નથી। તો આવું કેમ બને છે? સ્પષ્ટ છે કે આપણું હૃદય નિર્મળ નથી, હૃદયમાં કચરો બહુ જ ભરાયો છે। જ્યાં સુધી હૃદય ચોખ્ખું નહીં થાય ત્યાં સુધી ભગવાન આવીને વિરાજમાન થતા નથી, અને જ્યાં સુધી ભગવાન હૃદયમાં આવીને વાસ કરતા નથી ત્યાં સુધી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી। તેથી આપણે સૌ કોઈએ ભગવાન હૃદયમાં વાસ કરીને રહે તેવું હૃદય ચોખ્ખું રાખવું જોઈએ।
1: હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા વિચાર બિંદુ ચોખ્ખું હૃદય, પઠન કરી રહ્યા હતા હર્ષા ઠક્કર આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી। હવે સાંભળીએ ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના। કાર્યક્રમમાં સૌ પ્રથમ સાંભળીએ બચુરામ કાપડાનો સ્વાગત।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हैवेनिन से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी

व्यक्तिगत थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों

0: देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष के संचार निदेशक जूली कोर्जेट ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मालदा में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the

समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवास भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमिने से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों

जय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बाद में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अंकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव और फुटिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप

जाएगा सब कुछ और कोई नुकसान मुझसे पहले नहीं, तो पक्की हो जाएगी हमारी जीत।

0: आरोग्य निर्देशिकाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित की जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास

0: पक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। पासपोर्ट की नए शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वही खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित शाह।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज

कन्वेंशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट

www.net.in.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्षभर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था।

किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।

0: सकते से खड़े हैं। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाह है, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द है, नकदी और कीमती सामान गिरने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 1400 बहुत बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1000 रूपए महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाए NRC की जरूरत, लोकशक्ति ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। यशवंत के शब्द है, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्ययन शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छह मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवसे प्रधानमंत्री कटोकटी दरमियान लोकशाही मूल्यों रक्षण में अलग रहेगा तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि आपी। भारतीय हरियाणा गुरुग्राम में ब्रिक्स अध्यक्षता हेठ 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में आयोजन कर उपराष्ट्रपति ने सभापति सीपी राधाकृष्णन आदर्श राज्यसभा ने 9 निर्वाचित पुनः चुटाया 10 सभ्यों ने शपथ लेवाया। वेनेजुएला में भी शक्तिशाली भूकंप में 164 लोगों ने मौत और 971 लोग घायल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूके साथ मुक्त व्यापार करार एतिहास सुधी में सबसे व्यापक करार। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट पूरे 12908 उद्योगकरण 1432 करोड़ सहाय चुकवाई। राज्य में शाला प्रवेशोत्सव दरमियान 16.35% विद्यार्थियों शाला में नामांकन कराया। आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग विरोधी दिवस गुजरात पुलिस 5600 करोड़ मादक पदार्थ झड़पया। आज मुस्लिम मुहर्रम पर्व गंभीर ध्यानपूर्वक मनाश भूज अंजार मांडवी मुंदा सहित शहरों और गांवों में ताजिया निकलते जुआ मेघदी मुकशे। कच्छ में त्रिदिवसीय प्रवेशोत्सव दरमियान आंगनवाड़ी थी लेने 9961 बालक ने प्रवेश अपाया। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन अंतर्गत कच्छ जिला वहीवटी तंत्र द्वारा भूज खाते शिक्षण राज्य मंत्री त्रिकुणभाई छांगा अध्यक्षस्थाने प्राकृतिक कृषि कार्यशाला योजाई। कच्छ जिलामां गैरकायदेसर खनन अने खनिजना बिन अधिकृत परिवहन सामे जिला वहीवटी तंत्र द्वारा झीरो टॉलरन्सनी नीति हेठळ सघन कार्यवाही हाथ धरवामां आवी। आगामी 7 दिवस कच्छ सौराष्ट्र विस्तारमां हळवोથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના। ભારતીય મહિલા ટીમે બાંગ્લાદેશની ટીમને 5 વિકેટ હરાવી મહિલા T20 વિશ્વકપના ગ્રુપ એમાં બીજા નંબરનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું અને ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની T20 મેચની શ્રેણીનો આજથી આરંભ। હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર સવારે 9:30 મિનિટે।

0: अयाम मुझे मणि सौंदर भाभी के आया आजी जी दोस्त पल्लवी सुनोता कच्छी कार्यक्रम हलो करियूं गाल अज पांजे विच आया आई मुंगाले जा मुंद्रा पंथक जा कोकिला भेण गड़ा जो को एकड़ा कच्छी सर्जक है इन्हीं जो तखलुस है कोकी तो हलिया कोकिला भेण आंजो स्वागत है असांजे कच्छी कार्यक्रम हलो करियूं गाल में
1: आदा पल्लवी भेण अने आकाशवाणी भुज जो जो आई मुख्य अज हते बोला है अने मुझी रचनाओं के मुझे परिचय बने जी तक बनाया
0: जरूर जरूर अने अई कटिया वर्ष थी प्रोग्राम कर था कटिया वर्ष थी अई खेड़ान करो था से सजो परिचय असान जी श्रोता के लिए होता असान जा श्रोता अपन वहित कर थी
1: और कच्छी साहित्य में छेला सत्ता ठोरे थी खेड़ान कहिया थी अने गुजराती ननपन थी लखा थी
0: बरोबर
1: अज्ञा चा तो मुझा कच्छी बहुत पुस्तक प्रकाशित थे आई पहलो है हाइकू संग्रह गड़खी जो को 2021 में प्रकाशित थियो अने अन संग्रह के कच्छी साहित्य एकेडमी वरे 2021 जो तृतीय बेस्ट बुक जो अवार्ड बने है
0: खूब सरस
1: अने बो संग्रह है झापो जो को 2024 में प्रकाशित थियो अने ये है कच्छी काव्य संग्रह ते उपरांत सप्तखंड मुझा गुजराती सहियारा पुस्तक में मुझे रचना हुआ है
0: बराबर आने आओ सो यो है कि अंके को ककरो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अवार्ड पर मिले लो है तो इनमें से पर आसान जो सोते हैं कि वाइट गर कराओ
1: हाँ ये अनु है कि महामहिमावंत गिरनार करे नहीं अपरो पुस्तक दिलीप धोड़किया संकलन का जन्म फक्त गिरनार ते गजल हुई हमने मुझे पण गजल जो समावेश आए अने ये पुस्तक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया जाहिर थियो अने इनमें दरेक सर्जक है के पण वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया जो बिरुद मिले हुए ते उपरांत पण पल्लवी भेण नंढा वड़ा घणे अवार्ड मुके मल्ले आई जन्मे वरे 2005 में नारी गौरव पुरस्कार थी सम्मानित करे में आवाई है मुके हेवर थोड़े महीने पहला कच्छियत करने भजजी संस्था है जो को कविता जी स्पर्धा रखे गए हनमे पर मुझे गजल के पुरस्कार मिले हुआ है त्रिजो हेवर गए मैंने कच्छ कल के अवार्ड ला जन्मे साहित्य अवार्ड मुझे ना मिले हुआ है मुके अने हेवर काल जना हारमोनी आर्ट एंड कल्चर घणे साहित्यकार के अने अलग अलग फील्ड में मणि के नवा जे आए ता हमने पण गुजराती साहित्य में मुके प्रथम पुरस्कार मल्यो आए अने हाणा नंढा वडा नंढी वडी कॉम्पिटिशन जा घणे इनाम मल्या आई मुके
0: सरस सरस सही बहुत सरस खेड़ करो था अने इन मदले अंजी बदी आके सारे अड़ा पुरस्कार एनाए थे आए तो हाणे अज अई असा जे श्रोताए वटे को रजू करे आयो
1: अज आऊं पहला हाइकू थी शुरुआत कईंदी अने पोए कविता रजू कईंदी
0: जरूर थी तो सरस मजा जा हाइकू परसो असा जी श्रोताएं बटे
1: ही हाइकू अड़ा ही की जुको मरे पास हाइकू चौवा जे हन टाइप जा हकड़े बे साथे संलग्न ही से और रजू करिया थी
0: बराबर हकड़े बड़ी गाल पूछ रही के पांजे घणे श्रोताएं की खबर न होंगी कि हाइकू प्रकार है तो इनजो बंधारण जी खोड़ खासियत है से पंज लाग जनाई लो
1: हाइकू एकड़ी नंढो कविता जो प्रकार है जो को ओरिजिन जापान में थो है अने हाने तो गुजराती कच्छी मणि भाषाएं में लखजे था हमने हेड़ो वे के पहली जो को लाइन वे अने खाली पंज अखर बड़ी लाइन में सत अखर अने त्राई लाइन में वरे भाषा पंज अखर हरी तो टोटल 17 अखर जो समूह वे तो हमने
0: बरोबर कहां है जो करिया सावटे राइट
1: मट्टी जो लोंदो चक पे चढ़ाई ने गड़िया आई घाट प्रेम जी वाट सजन बुआरी ने कई दना लाट दुख जा कंडा चुंडी करी ने फुल वछाया वाट मोहब्बत जी धड़की वछाई ने सजाया खाट बनिया मेहमान तबानो नना धारे सोन जी पाठ
0: वाह बहुत सरस ही ताई जो को हाइकू है नंदा नंदा हाइकू इनके पर कविता जो स्वरूप में परसाया तो खरे खर बहुत स्वादिष्ट लगा अने हने आजी भी कविता पर सोचा जे श्रोता के
1: आभार पल्लवी बे कविता जो मथाड़ो आए अज प आए
0: बराबर
1: काल प हुई ने तौजी असर अज प आए काल प हुई ने तौजी असर अज प आए त तौला करे ही सकदी नजर अजप आए। मुठ पोखे त न्यार तू बजमो भजो, मुठ पोखे त न्यार तू बजमो भजो, गल में बिसियाल वतर अजप आए।

0: भले तू टुकर कांच जो समझी घड़े मुके, भले तू टुकर कांच जो समझी घड़े मुके, ताए हीरे जड़ी तौजी कदर अजपाए।
1: बहुत सरस, बहुत सरस।
0: मी मेणा वरे वने ताए आसमाए तोटी, मी मेणा वरे वने ताए आसमाए तोटी, मलन जी मन में सबर अजपाए। अचिंदो घर तोजो मुझे पंद में कोकी, अचिंदो घर तोजो मुझे पंद में कोकी, अन उम्मीद में चालू सफर अजबाए।
1: अजबाए खरेखर खूब सरस कविता हुई। अने हवा सरस मजा जी एकडी कविता सुनाई जो असांजे श्रोता की
0: तो रजू करिया थी। दाल बेजे घर जी जाने वाला गच्ची, दाल बेजे घर जी जाने वाला गच्ची, चढ़ो झाड़ तपाग ताने वाला गच्ची।
1: खरे कर सच्ची गाल है।
0: वह धाई पंड जो तब वकड़े ता बदे बाज के, वह धाई पंड जो तब वकड़े ता बदे बाज के, पर गने ताने बेजो छाने वाला गच्ची।
1: खरे कर
0: तम वजू अकाज उभा न थिए कदे, तम वजू ता अकाज उभा न थिए कदे, लखे जो गालियो लाने वाला गच्चे।
1: सरस बहुत सरस।
0: खबर पे लाचारी में मारू को वकजे तो, खबर पे लाचारी में मारू को वकजे तो, वकान दो घनन ई नानी वाला गच्चे।
1: हाँ गच्चे नानी वाला बोला।
0: खींचे मजा पंडजे कदे टको न कढ़िए, खींचे मजा पंडजे कदे टको न कढ़िए, मजा वे मफत जी माने वाला गच्चाई।
1: माने वाला गच्चाई।
0: पंद में केनू जो जरा अग्या वध्या कोकी, पंद में केनू जो जरा अग्या वध्या कोकी, धसेला आके फटक हाने वाला गच्चाई।
1: सच्ची गाल है बोला।
0: गाल बेजे घर जी जाने वाला गच्चाई, ने चलो झाड़ता पग ताने वाला गच्चाई।
1: सच्ची गाल है। खूब सरस कविता आने एकड़ी रंग स्वरूप कविता रजू करया। आने हने कोरो रजू करदा गजल की कविता।
0: हने अपनी गजल रजू करिया थी
1: जी।
0: नत नत मरे ते के रुए के इरचो, नत नत मरे तेके रुए के इरचो, कायम हत नवरो हुए के इरचो।
1: सच्ची गाल है।
0: एकांदी मड कैर दुई डे को, एकांदी मड कैर दुई डे को, रोज लड लुगड़े जी धुए के इरचो।
1: बराबर।
0: गाव पर्या वाड़ी ते पंद करे वेणु, गाव पर्या वाड़ी ते पंद करे वेणु, वनी खट्टा आमा चुए केर चो।
1: बरोबर है।
0: पंजा जो खाए खीर दे पंजी जो, पंजा जो खाए खीर दे पंजी जो, मेरी पाकड़ ते के डुए केर चो।
1: बरोबर है।
0: दुख वे सचो त भाग वराई मरे, दुख वे सचो त भाग वराई मरे, वे कुर्जा रूंगा लुए केर चो। नातो पत्ते जे मेल जड़ो रखे, नातो पत्ते जे मेल जड़ो रखे, कोकी बठो वाठो छुए केरचो।
1: हाँ सही पैटर्न टैलेंट।
0: नत नत मरे ते के रुए केरचो, कायम हत नवरो हुए केरचो।
1: सच्ची गल है। अने ये कविता जो कोई बतावा है,
0: नत नत मरे ते के रुए केर।
1: हाँ असाजे में ही चौदह सही कि रोज मरे कहके के रुए, एटले जो रोज मरे थोड़ो थोड़ो दुख रोज जन के वे तनके कोई पूछा कर लेना चाहिए, कदे कोक मरे तो मारू रोने लभे रहती है, पर ये कहन जड़ी गाल है कि मित्र तुम्हारे कहके के रुए।
0: हाँ बल्ली बेन
1: करे कर बहुत सरस कविता रजू करा। आने हने हना थोड़ो की कैसा जो सोता है कि बस पान खाओ
0: तो हकड़ी कविता ज रजू करिया थी
1: जी। जरूर।
0: पा पंद में कोई बात बदला ही ना सका, पंद में कोई वाट बदलाए न सका, बस ती मुझे

0: हाल बदलाए न सका मुके खपे जो उजारो तो दुखाए गना दियो मुके खपे जो उजारो तो दुखाए गना दियो वे कारी अंधारी ही रात बदलाए न सका
1: सच्ची गल है
0: खबर नती पे कुला मारू भाव फटाइए पंड जो खबर नती पे कुला मारू भाव फटाइए पंड जो मुझो धर्म ने मुझी नात बदलाए न सका
1: बदलाए सका जी
0: जन गाजला सुई मुके टाके आए लुगड़े जन गाजला सुई मुके टाके आए लुगड़े भूतान अया मुझो गाज बदलाए न सका
1: सच्ची गल है
0: कुंभार घड़े उतारे मुके चक मथानु कोकी कुंभार घड़े उतारे मुके चक मथानु कोकी जोरी पासे हले मुझा गाट बदलाए न सगा जोरी पासे हले मुझा गाट बदलाए न सगा पा पंद में कोई वाट बदलाए न सगा दस ते मुझी ही चाल बदलाए न सगा
1: બહુ સરસ કવિતા લખ્યા અને હવે પાંચો ટાઈમ પૂરો થયો હતો તો કોપી લગણ આજે ખૂબ ખૂબ આભાર જેકો અસાંજે લાયા અને અસાંજે શ્રોતાએ કે એટલો સરસ મજાનો રિસ્પોન્ડ કરાયા
0: આભાર પલ્વી ડેન તે ફરી પાછો આકાશવાણી ભુજ જો આભાર મનિયા થી કે મુકે તક ડના અને આજે બહુ જ મજા આવે મુકે પણ
1: સરસ અસાંજે શ્રોતાએ કે પણ ખૂબ મજા આવી હતી અને એને આવ રજા ગંદી છે તો અસાંજે

करता है। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैये चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडे, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, ग्राम पुटकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, रीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत के अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी है, प्रकृति का चमत्कार है। ये भारत के सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध है। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार के दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा है। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज।

0: सच क्यों पड़ा? इसका नाम पॉडकैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती है। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण यह स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव है।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात कहेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 5 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट अल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण

0: निर्माण विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल, दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Thank you so much.
3: Hey, Martin, how are you?
4: Oh, fine.
3: Thanks for coming. Please come in.
4: Yes, yes, yes.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे

0: नमक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गई और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार करने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं,
2: देखिए, आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: पूरी चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव।

0: 去那个车头，他不想你，你杀了爹娘，他掐死他好几个。啊समय सबने उनका मन रखने के लिए दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
1: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक
2: जनवरी 1965 में ही 9 साल की जस्ट में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थी कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। '85 में उनकी आवाज खो गई। अब मरना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हील चेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल चुका था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच कैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस कैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिया।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the objects of the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
2: मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में रिकिन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपने मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। यह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन

0: नए शब्द अंकित हैं। यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहले नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
2: चलो बच्चों, आ जाओ, पहले टाइम आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो बिना देर करे शुरू करें पहले। बढ़िया, गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। बूझे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दो प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ? सूरज। वाह, एकदम ठीक भाई, तुम सब
3: पूछते हो।
2: ओफो, क्या करूँ, मुझे मुश्किल नहीं आती नहीं। हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल नहीं मिली। नहीं, मुश्किल वाली पहेली तुम्हारे पास होती है ना? कितनी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब कुछ जल्दी से जवाब बताओ।
3: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
2: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
3: वो तारा होता है।
2: ये भी बिल्कुल ठीक,
3: रात और दिन भी बनाते हैं।
2: एकदम सही, एकदम सही।
3: धूप भी देता है।
2: बिल्कुल, धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से अच्छी बात भी होती है।
2: हाँ, हमें क्या मिलता है पता उससे?
3: विटामिन डी।
2: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है? बहुत अच्छे, शाबाश।
3: और अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
2: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं।
3: धीरे धीरे घूमते जब सुबह रात होती जाती है।
2: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ, जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
2: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: वैसे जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
2: अरे क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है? और कभी

0: सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
1: वो बहुत बड़ा भी होता है,
0: बहुत बड़ा होता है,
1: पर हमें छोटा लगता है।
0: हम क्योंकि हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है, और कभी कभी मन करता है कि शायद
1: सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
1: वो से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: सर्दी में ठंड बहुत लगती
0: है। शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन फिर भी जीवन दाता है।
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती

0: अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: वैसे कब पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है।

0: हमें जब समय रहता है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रायोजित एनसीईआरटी प्रसारण आकाशवाणी भोज केंद्र पर थे
1: कार्यक्रम की तकनीकी टीम।

News Headlines खबरें दोस्तों आवाजों स्वागत है करें संडे कार्यक्रम सुरहाल में। दोस्तों सुरहाल जी अज जी कड़ी में असे आज लाए खड़े आए मावाद मैगजीन चाय जी चुस्की लेखन है पेशकश श्रीमती मेनू मैंघानी। चाय जी चुस्की चाय

0: सुनाते कथा हस्ती छाचर माँ तो खा पूछी रही है मुझी सखी कथा हस्ती
1: यह तो संस्कृत है पर अन्य जो मतलब मुख्य खबर बनी है
0: कथा हस्ती मतलब कैसी हो
1: छो बोला कभी की कथा प्रवचन बुद्धि मोटी है यही छो छो तो की संस्कृत छे याद अच्छी है यही
0: छा बुधा है सुनीता अज जो दौर में असा ये राष्ट्रभाषा हिंदी जो वजूद कितने ना खतरे में अची वो आए जिते भी दिसो हिंदी जो स्थान अंग्रेजी पसे चढ़ो आए जहाँ तक हिंदी भाषा जो अस्तित्व है डगमगा गयो है तो ऐडी हालत में कर्नाटक में एक गांव है

0: ॿुधाए थी चाहियां।
1: हा हा, पर हिन गांइ जी अहिड़ी त कहिड़ी ख़ासियत आहे?
0: तोखे ॿुधी करे आश्चर्य थींदो कि हिन गांइ में सभई माण्हू संस्कृत में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि।
1: अच्छा।
0: हा, कर्नाटक में शिमोगा शहर खां 10 किलोमीटर परे हिकु मुतुरु गांव आहे, जेको तुंग नदीअ जे किनारे खां वसियल आहे। हिन गांव में प्राचीन काल खां ई संस्कृत ॻाल्हाई वेंदी आहे।
1: कमाल आहे, असांखे त संस्कृत ॾाढी ॾुखी लॻंदी हुई। जॾहिं स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं न, त सभु श्लोक रटे वेंदा हुआसीं।
0: तुंहिंजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे, पर हिते 500 परिवार जे हिन गांव में पेर रखंदा ई भॻत नाम कीन, तव्हांजो नालो छा आहे, हैलो जी जॻहि ते हरिओम, बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही। हिते सभु माण्हू सहजता सां संस्कृत में ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। ऐं वरी भाषा ते त कोई धर्म या समाज जो अधिकार त हूंदो ई कोन्हे न। इन करे हिन गांव में रहण वारा मुस्लिम परिवार जा माण्हू बि ओतिरी ही सहजता सां संस्कृत ॻाल्हाईंदा आहिनि जेतिरा ॿिया
1: सभु। पर हिन ॻोठ जी पंहिंजी काई ॿोली या मातृभाषा त हूंदी न?
0: इहा ई त हिन गांव जी ख़ासियत आहे कि हिननि जी मातृभाषा ई संस्कृत आहे। गांव जा ॿार क्रिकेट खेॾंदा लड़ाई झगड़ा बि संस्कृत में ई कंदा आहिनि।
1: अच्छा।
0: गांव में सभिनी हंधि लिखियलु आहे, मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्रामे सुजनाः विराजते, मतलब रोडन ते या रस्तनि ते सफ़ाई हुजण सां ख़बर पवंदी आहे कि हिन गांव में सुठा ऐं सफ़ाई वारा माण्हू रहंदा आहिनि। हिते ॿारनि खे प्राइमरी एजुकेशन ई संस्कृत में ॾिनो वेंदो आहे।
1: इहा त केतिरी न सुठी ॻाल्हि चइबी त हिन ॻोठ वारनि असांजे भारत जे विरसे खे संभाले रखियो आहे।
0: हा सुनीता, ॾिठो वञे त संस्कृत भाषा त असांजी प्राचीन काल जी भाषा आहे। असांजा प्राचीन ऋषि मुनि बि इन ई भाषा जो इस्तेमालु कंदा हुआ। तोखे ॼाणी करे आश्चर्य थींदो कि संस्कृत भाषा मां ई अंग्रेज़ी ऐं लैटिन भाषा जो उद्भव थियो आहे। यानी कि हीअ संस्कृत भाषा त सभिनि भाषाउनि जी जननी भाषा थी न, ऐं उन जननी भाषा खे जीवंत रखण वारे हिन नंढड़े गांव खे असां सभिनी जे तरफ़ां वॾो वॾो सलाम, जंहिं असांजे भारत देश जो गौरव वधायो आहे।
1: हा मीनू, इहा ॻाल्हि त तूं पते जी कई, पर असां जहिड़ा माण्हू हुन गांव में वञनि त असांखे त शायदि ई ॻाल्हाइणो पवंदो।
0: सुनीता, पर मां अगरि तोखे ॿिए कंहिं अजायब गांव में वठी हलां त तोखे इशारनि सां ॻाल्हाइण जी ज़रूरत ई कान पवंदी। फ़र्क़ु थी सघे त तोखे हुते कोई जुर्मानो भरणो पवे।
1: छा चए, इहा वरी नई कहिड़ी ॻाल्हि चए भई, जुर्मानो भरणो पवंदो?
0: हा, इहो बि अथई हिकु अजब गज़ब जो गांव, जेको हिमाचल प्रदेश जे कुल्लू ज़िले में मलाणा नाले जो गांव आहे, जेको ॾाढो ई रहस्यमय गांव आहे।
1: अहिड़ो त छा अघु आहे हिन गांव में?
0: ॾाढो अजीब गांव आहे मलाणा। हितां जा रहवासी पाण खे सिकंदर जे सैनिकनि जा वंशज मञींदा आहिनि।
1: अच्छा।
0: हिते को बि भारतीय कानून कोन हलंदो आहे। हिन गांव वारनि जी पंहिंजी संसद आहे, जेके गांव जा सभई फ़ैसिला कंदी आहे। मलाणा भारत जो हिकु इकलौतो गांव आहे, जिते सभु ॼणा मुग़ल सम्राट अकबर जी पूजा कंदा आहिनि।
1: राजा अकबर जी? हा, अकबर राजा त सभिनी धर्मनि खे समान नज़र सां ॾिसण वारो ऐं पंहिंजे न्याय प्रियता लाइ तमामु घणो मशहूरु हो।
0: तॾहिं त हू हिंदू राजपूत ख़ानदान जी ज़ोरदार खां शादी बि कई हुई ऐं हुन खे पंहिंजे महल में कृष्ण जो मंदरु ठाहिण जी इजाज़त बि ॾिनी हुई। अहिड़े राजा जी पूॼा असांजे भारत देश में थींदी आहे, यानी कि मलाणा गांव बि गौरव जो प्रतीक लेखियो वेंदो हूंदो। पर सुनीता, हिन गांव जी हिकु ॿी बि अजीब ॻाल्हि आहे।
1: ॿी वरी कहिड़ी अजीब ॻाल्हि भई? छा ही ॻोठ अजब ॻाल्हियुनि सां भरियलु आहे छा?
0: अरे, ख़ासियत बि अहिड़ी जेका कॾहिं ॿुधी न हुजे। हिन गांव में अगरि कोई बि ॿाहिरियों माण्हू अचे थो ऐं कंहिं बि शइ खे या माण्हूअ खे हथ लॻाईंदो, त हुनखे 1000 खां वठी 2500 ताईं जो जुर्मानो ॾियणो पवंदो।
1: ओहो, पर हिन जो कारण छा आहे भई?
0: बसि, हुननि जी इहा अजीब परंपरा आहे।

0: मर्जी सां हलाईंदा आहिनि। थी सघे त उहे पाण खे सिकंदर जे सैनिकनि जा वंशज समझनि आहिनि, इन करे पंहिंजा अनोखे रीति रिवाज ठाहींदा आहिनि ऐं राॼ मारींदा आहिनि। हिन गांव में हर साल हज़ारनि जी तादाद में टूरिस्ट ईंदा आहिनि, पर उन्हनि खे रहण जी व्यवस्था हिन गांव में अंदर न हूंदी आहे। सभु टूरिस्ट गांव जे ॿाहिरि टेंट में रहंदा आहिनि। छो? छो कि अगरि हिन गांव में कंहिं बि ॿाहिरि माण्हू कंहिंखे बि कंहिं मकान खे, दुकान खे या माण्हूअ खे टच करे छॾियो, त हितां जा माण्हू उन व्यक्तिअ खां हज़ार रुपया जुर्मानो वसूल कंदा आहिनि।
1: यानी छा ॻोठ जा माण्हू हर पल नज़र रखंदा आहिनि?
0: बिल्कुल, उन्हनि जे गांव में हर जॻह ते वॾा वॾा नोटिस बोर्ड लॻल आहिनि ऐं हुन बोर्ड ते साफ़ साफ़ चेतावनी लिखी वई आहे, जुर्मानो थींदो। ऐं इन करे मलाणा गांव में जेके बि दुकान आहिनि उते गांव जा माण्हू त आसानीअ सां सामान ख़रीद करे सघंदा आहिनि, पर ॿाहिरां माण्हू हुन दुकान में अंदर वञी सघंदा आहिनि ऐं नए दुकान जे सामान खे टच करे सघंदा आहिनि।
1: त पोइ ॿाहिरां आयल माण्हू वीचारे सामान वठंदा कीअं आहिनि?
0: उन्हनि खे दुकान जे ॿाहिरां बीह करे सामान घुरणो पवंदो आहे। दुकानदार पहिरियों सामान जी क़ीमत ॿुधाईंदो आहे ऐं पोइ हू ख़रीदार दुकान जे ॿाहिरां पैसा रखंदो आहे ऐं पोइ हुनखे सामान दुकान जे ॿाहिरि रखी ॾींदा आहिनि, जिते हू पंहिंजो सामान खणी वेंदो आहे।
1: अॼु त तव्हां केॾियूं न अजब गज़ब वारियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि न, दिलि ख़ुशि थी वई।
0: हा सुनीता, पर अॼु त ॾींहुं कहिड़ो न सुस्तीअ वारो आहे।
1: लॻे थो तूं कल राति पूरी निंड न कई आहे। हिकु ॿी चांहि जी चुस्ती थी वञे।
0: हा शिरा, बिल्कुलु।

0: सुनीता, छा तव्हां जी ज़िंदगीअ में कोई अहिड़ो इंसान आहे जंहिंखे तव्हां जूं सभु ॻाल्हियूं ख़बर हुजनि?
1: छो?
0: जंहिंखे तव्हां बिना कंहिं डप जे, बिना कंहिं शंका जे, कोई पूर्व भूमिका ठाहिण बिना सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए सघो, आहे कोई अहिड़ो माण्हू?
1: कंहिंजूं बि सभु ॻाल्हियूं कंहिंखे बि ख़बर न हूंदियूं आहिनि। तूं चवण छा थी चाहींदी?
0: मां इहो ई चवण थी चाहियां कि सभिनि माण्हुनि खे पंहिंजूं सीक्रेट ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं दुनिया जी हर व्यक्तिअ खे कुझु चवणो हूंदो आहे। कंहिंखे कुझु ॿुधाइणो हूंदो आहे त कंहिंखे कुझु। पर सभ खां वॾो सवाल त इहो ई आहे कि कंहिंखे चइजे, कंहिंखे ॿुधाइजे। हीअ ॻाल्हि ॿुधी करे माण्हू मुंहिंजे लाइ छा चवंदा? मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झी सघंदा या कोई ॿियो मतिलबु कढंदा या वरी कंहिंखे ॿुधाए त न छॾींदा?
1: हा, इहा ॻाल्हि त सोचण जी आहे, छो त ज़िंदगीअ में घणेई ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जेके असांखे लॻंदो आहे कंहिंखे ॿुधायूं, कंहिंसां शेयर कयूं।
0: तोखे ख़बर आहे, इन लाइ क्रिश्चन धर्म में हिकु सुठी सिस्टम आहे कि हर चर्च में हिकु कन्फेशन बॉक्स हूंदो आहे जिते कोई बि माण्हू वञी करे पंहिंजूं सभु सीक्रेट ॻाल्हियूं जी क़बूलात कंदो आहे ऐं पंहिंजे मन जो ॿार हल्को कंदो आहे। मन में ॻाल्हियूं त घणियूं हूंदियूं आहिनि, ज़िंदगी में ॼाणींदे या अणॼाणीअ में थियल भुलूं, कंहिंसां थियल नफ़रत त कंहिंसां थियल प्यार त किथे किथे दिलि में उछल खाईंदड़ तमन्नाऊं कंहिंखे कॾहिं

0: हुजे अहिड़ियूं रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में घणेई ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जंहिंजी क़बूलात असांखे करणी हूंदी आहे पर घणनि ई कारणनि जे करे असां कोन करे सघंदा आहियूं
1: मीनू अॼु त तूं केतिरी न नंढी पर केॾे न अहमियत वारी ॻाल्हि जे बारे में ॿुधायो अथई
0: हा सुनीता मां त सिर्फ़ एतिरो ई चवण थी चाहियां कि अॼु जो माण्हू पंहिंजे दिल में केॾो न भार खणी घुमंदो आहे ऐं पोइ बि कंहिंखे ॿुधाईंदो कोन आहे चवंदा आहिनि न कि खोलते न दिल अगरि दोस्तनि खे साथ त खुलवाने न पड़ोस हज़ारनि खे साथ इन करे ई ज़िंदगीअ में दोस्तनि जी अहमियत वधीक हूंदी आहे असां उन्हनि सां कोई बि ॻाल्हि शेयर करे सघंदा आहियूं पंहिंजे करे त इहो जिंगल ॾाढो फेमस थियो हुयो हर एक दोस्त ज़रूरी हूंदो है पर कहिड़ो दोस्त तव्हांजे लाइ कंसेशन बॉक्स ठही सघे थो उहो त तव्हांखे डिसाइड करणो पवंदो न
1: मां त अहिड़े दोस्त जी ॻोल्हा में कॾहिं खां आहियां पर अञा ताईं कोई मिलियो ई कोन्हे
0: हिकु साइकेट्रिस्ट ॿुधायो त हाणे हाणे सभु जॻहि ते तनाव जो प्रमाण ॾाढो वधियल आहे छो की ॻाल्हियूं हिकु ॿिए खां लिकायूं थियूं वञनि अगरि ॿुधाइनि था त कोई भड़के थो त किथे रिलेशन ख़राब था थियनि ऐं इन जे करे ई ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जहिड़ियूं समस्याऊं ॾाढियूं वधियल आहिनि
1: तुंहिंजी हेतिरी नंढी ॻाल्हि आहिस्ते आहिस्ते वॾो रूप वठी रही आहे
0: वॾो रूप चाहे केतिरो बि हुजे सुनीता पर सभिनी समस्याउनि जो समाधान हूंदो आहे ज़रूरत आहे त सिर्फ़ सोच बदिलण जी ऐं हा तव्हांखे कोई कन्फेशन बॉक्स मिले या न मिले पर तव्हां बि कंहिंजे लाइ कन्फेशन बॉक्स ठही सघो था न कंहिंजे मन जो भार हल्को करे सघो था कंहिंखे विश्वास ॾेई सघो था कि हुन जेको भरोसो तव्हां ते कयो अथई उहो सही आहे तव्हां बि हुननि जो सीक्रेट बरकरार रखी सघो था ऐं तव्हां बि कंहिंजे मन जो भार हल्को करे सघो था हुनजे वेझो वञी सघो था उन्हनि जा आंसू उघी सघो था उन्हनि खे मौत जे मुख मां बचाए नई ज़िंदगी ॾेई सघो था
1: बिल्कुलु
0: चलो कुझु पुराने दोस्तनि खे दरवाज़े खटखटाते हैं देखते हैं उनके पंख थक चुके हैं या अब भी फड़फड़ाते हैं खिलन था दिल खोले करे या चट बंद करे मुस्कुराइन था छा उहे बयान कनि था पंहिंजी कहाणी या सिर्फ़ पंहिंजी सक्सेस स्टोरी ॿुधाइनि था असांजो चेहरो ॾिसी हू पंहिंजे हथ सां मुस्कुराइनि था या घरवारी तरफ़ नज़र करे असांखे वञण जो टाइम ॿुधाइनि था चलो कुझु पुराने दोस्तनि खे दरवाज़े खटखटाते हैं देखते हैं उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं
1: वाकई

tamil mudiraya ho chai ji chuski chai ji chuski hene ke badi ka mazedar and lazatdar banana tamil banjara ya sujal asan ki zarur likhi bukle na hene address de chai ji chuski program station director sindhi vibhag akashwari navrampura andabad nama to dosto hene mukhara jawab tachiwa hai वरी मिलेंगे ऐसी चैन की चुस्की जी अगले करियर में तेज टाइम खुश रहो आबाद रहो चैन की चुस्की दोस्तों में बिधि रहा हो लेखने पेशकश श्रीमती मीनू मेघणी अजी जी पेशकश में सिद्धि और था इजाजत चाहिए था नमस्ते।

आप सुन भी रहे थे फिर मिलेंगे तो केदारनाथ कार्यक्रम में अंत में मथुरा ने सचिव ने संभाली है फिल्म नाम मलंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक

संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी है। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे टैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। वह शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुंदर ठाकर, रेखा ठाकर आप समझ रहा था, वर्षाती जगदीश जोशी सुगम संगीत नो कार्यक्रम समाप्त है। प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केन्द्रों पर कर 1:20 आगे सांभ गुजराती में समाचार।

लता मंगेशकर शब्बीर कुमार और साथियों ने आप सुन रहे थे, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर शब्बीर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम था राधा का संगम। अभी आप सुनते हैं अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज और साथियों को। फिल्म का नाम खुदा गवाह।

अल्काग्निक बाबू सुप्रिया और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था सात रंग के सपने। इसी के साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम संपन्न होता है। आगे दीजिए जय जवान।

0: checking that. Dobra, ćwiczę na jednym posiedzeniu do pochodu samochodu.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चौराहे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत लय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमें जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चौराहे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधीय और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है।

0: ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नया असर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: 60,000 स्टूडेंट्स
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास के लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगे। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिया निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मोहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने के प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निहाती के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्टाद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 NCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तित्व का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें दो भीष्म क्यूब भी शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं।

0: से हराकर टूर्नामेंट में अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

तरफ से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति एसआईटी का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Minister Narendra Modi today said that Nasha Mukt Bharat Abhiyan has become a mass movement driven by public participation. Mr. Modi said this while sharing an article of Minister of State for Social Justice and Empowerment, B.L. Verma, on the importance of building a drug-free India. In a social media post, the Prime Minister called upon every citizen to join the mission of building a drug-free India and a Viksit Bharat. In his article, Mr. Verma said that the government considers drug abuse a critical issue linked to the future of India's youth and the progress of the nation. The minister called upon every citizen of the country, especially the youth, to become a part of this national campaign against drug abuse. Home Minister Amit Shah has called for a united war against drugs, saying the drug menace threatens the national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. Mr. Shah made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi.
4: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next few years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
3: The UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, or SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence, AI technologies, at the second PAC Silica Summit in Washington yesterday. Speaking to media, US Undersecretary of State for Economic Affairs, Jacob Helberg, said the United States is excited to deepen its partnership with India, describing the bilateral relationship as one of the most consequential of the 21st century. Union Education Minister Union Education Power Dharmendra Pradhan today met Bhutan's Education Minister Yizhangdi Thapa. In a social media post, Mr. Pradhan said that the discussions focused on training of teachers, skilling and employability, digital education and AI, sustainable tourism, traditional medicine and holistic well-being. The minister said there is immense potential for both the countries to collaborate on larger platforms of learning, innovation and capacity building. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussain. He said that Hazrat Imam Hussain continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today announced Operation Amistad, under which two Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent

इंटरसेप्टर बोर्ड अपनी अने देश की रक्षा करे छे। गुजरात राज्य दरिया किनारे 27 इंटरसेप्टर बोर्ड अपनी सुरक्षा दरिया में सतत पेट्रोलिंग करे।

0: सेक्शन नगर सप्लाई नगर योजना सेक्शन में नगर दिशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCFC के गुजरात शिक्षा में नगर दिशा तरफ आगे बढ़ रहा है। बालकों ने सर्वांगीण विकास में समर्पित अभ्यासक्रम न्याय कौशल्य मूल्य और सृजनात्मकता में समन्वय साधा है। उत्तम शिक्षण उज्जवल गुजरात में दिया साथ है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क शिक्षा विभाग गुजरात सरकार में एक मजबूत पैटर्न है। शिक्षा विभाग गुजरात सरकार
1: જીતેન્દ્ર રાવલના કંઠમાં દાસ સવો અને દાસી જીવનની રચનાઓ આપે સાંભળી લોકસંગીતના કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળશો આશાબેન વ્યાસ પાસેથી લોકગીતો

0: بغاوت أهم سركم. بنظر أمت شاء نشدار بدارتن كلاب يتمشتتي لانا جلنو سبب جايو نشدار أدارت راشت سلامتي أهن نوجوانن جي مستقبل جيلاي غمبي خطرو. उत्तर प्रदेश पुलिस राम मंदिर चढ़ावे ऐदान में गबन मामले में अठन शख्सन के कई गिरफ्तार। वाणिज्य उद्योग वजीर पीयूष गोयल के लंदन में मुंतजिम सालियाने यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन जे संबंधन के बेहतर करण में गैर आबादी क्यादत करण लाए सम्मानित कयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहर्रम ते हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के याद कयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाणे का 29 तारीख ताई सेशल्स के दौरे ते रहंदो। खबरू तफसीलवार उधना। गृह मंत्री अमित शाह आज नशे के खिलाफ लड़त लड़ यकमुश्त थियण जो सॾु ॾिनो आहे। हुन साहिब चयो त नशेदार पदार्थन जो कारोबार मुल्क जे सलामती समाजिक इंतज़ाम आर्थिक मुफादन ए नौजवानन जे मुस्तकबल लाइ वॾो खतरो आहे। हुन रूहानी अॻवाननि नौजवाननि ऐं माताउनि खे इन अभियान में मिली जुली हिसो वठण जी अपील कई। नई दिल्लीअ में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जे 10 आला सतही बैठक में श्री शाह चयो त
1: देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमें जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: मोदी को यह भी बताया कि साल 2004 खां साल 2014 विच में अटकल 26 लख किलोग्राम सिंथेटिक नशेदार पदार्थ जब्त किया गया है, जबकि कि साल 2014 खां साल 2026 विच में यह तादाद वधी 1.8 करोड़ किलोग्राम खां भी वधीक थियो आहे। उन्हें चयो त यह अंग अखर नशीले पदार्थन की तस्करी खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई के ॾेखारीनि था। गृहमंत्री चयो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीलन पदार्थन से जुड़ियल गुनाहन की जान वंढण लाइ केतिरा ई ऑनलाइन पोर्टल शुरू कया आहिनि। हुन सभिनी राज्यनि जे मुख्य सेक्रेटरियुनि ऐं पुलिस डायरेक्टर जनरल्स खे इन्हनि पोर्टल ते नशे से जुड़ियल मामलनि जी जान तय वक़्त मयार अंदर अपलोड करण लाइ चयो।
1: टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: सत वज़रात दवा साज़ी नियमन में सुधार वाधारे जो मसौदो जारी कयो आहे। उन तहत आमदनी करण में ईंदड़ दवाउनि जी बकाया मञता हद यानी शेल्फ लाइफ आमदनी वक़्त घटि में घटि 12 महीननि जी हुजण लाज़मी हूंदी।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने

0: गया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ही खबरों अभी आकाशवाणी तां बुधी रहे आयो वधी का खबरन जी तफसील लाए तभी आसान जी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था ऐसे सवाई तवा आसान जी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते पेण बुधी सको था। वाणिज्य उद्योग वजीर पीयूष गोयल के लंदन में मुंतजिम सालाने यूके इंडिया पुरस्कार में भारत ब्रिटेन के संबंधन के बेहतर बनाने में गैर आवाजी क्यादत करण लाइ खास पुरस्कार से सम्मानित किया वियो आहे। श्री गोयल आज सोशल मीडिया पोस्ट में यह ज्ञान वंडी उन चाहे तो यह सम्मान सरकारुन कारोबारियुन तालीम दानन संस्कृति जीवंत प्रवासी बिरादरियुन जे उन सबनी पुल निर्माताउन जो आहे जेके बिनी मुल्कन जे संबंधन के मजबूत करण में लगातार योगदान दे रहा है। उन्हें इन गुण घण मूल्यवान हिस्सेदारी के आबाद करण में पैंजन सबनी साथी पुरस्कार विजेताओं जी बेहतरीन योगदान लाइ खेन खेरू डिनो। श्री गोयल चयो तो 15 अगस्त का असरकारक थींदर भारत ब्रिटेन वसी आर्थिक व्यापार करार ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इतिहास में सब का तेजी से लागू थींदर व्यापार करार भरजंदो। उत्तर प्रदेश पुलिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जे चढ़ावे ए दान से जुड़ल मुबैना गबन जे मामले में दर्ज पहरी एफआईआर जे 8 नामजद तहमतवन के गिरफ्तार किया है। यह एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायत ते रचल खास जांच अमरी यानी एसआईटी जी सिफारिश का पुए श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कई गई। शिकायत ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन दर्ज कराई हुई। एसआईटी मंगल दी पैंजी शुरुआती रिपोर्ट सरकार के सौंपे दिनी जैखा पुए कल मामलो दर्ज क्यों वियो। ये मामलो ट्रस्ट के मिलल चढ़ावे धान में मुबैना चोरी के तहमतन सामू अचण का पुए रोशनाई में आयो। ट्रस्ट के अर्ज ते मुख्यमंत्री इन मामले की जांच लाए खास जांच अमले की रचना कई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाणे का 29 तारीख तई सेशल्स के दौरे ते रहंदा हु। जनाब सेशल्स के राष्ट्र दिवस के गोल्डन जुबली समारोह में खास मेजबान के रूप में हिस्सो वठंदा। प्रधानमंत्री इन खां अग साल 2015 में सेशल्स जो दौरो कयो हो। भारत रक्षा अमलन की एक टीम ए बैरी फौज जहाज भी समारोह में शामिल थींदा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से बाहमी सहकार के जुदा जुदा पहलुन जो जायजो वठंदा। उड़ा उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन है तो मोहर्रम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान साहस करुणा ए सत्य तोड़े न्याय डा अनटुटंदर वचनबद्धता जड़न दायमी मुलन की याद दियारन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहर्रम ते हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के याद कयो। प्रधानमंत्री चयो तो हजरत इमाम हुसैन जो बलिदान सत्य न्याय की वाट ते मुक्कम रहन की प्रेरणा दींदो आहे। मौसम दा रुख कंदे आबहवा महक में ओलह बंगाल के हेठाई वारन इलाकन सिक्किम बिहार साहली आंध्र प्रदेश साहिल कर्नाटक कोंकण गोवा विच महाराष्ट्र ए उत्तर ओभर के कुछ हिस्सन में तेज बरसात जा इम्कान जाहिर किया है। गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश ए उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में इंदर 3-4 दिन में दखण ओलह मानसून के अग्या वधण के लिए सूरत हाल मुआफिक है। तैलीम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भूटान के तैलीम मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात कई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान बुधायो तो गाल बोल मास्टरन की तरबियत माहिरियत विकास ए रोजगार सग डिजिटल तैलीम एआई लगातार साइबर सफर रिवायती दवाओं समूरी सेहत ते मरकोज हुई। तैलीम मंत्री बुधायो तो बिनी मुल्कन वट तैलीम नवाचार ए सग निर्माण की वसे मंचन ते सहकार करण जा अपार इम्कान आहिन। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर पैंजे बिन नियन जे दक्षिण कोरिया यात्रा जे दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून सांगल बाहमी लागापन के मजबूत करते वसे गुफ्तगु कई। बिन्हीं अगुवान व्यापार ए सीरप माली सहकार जहाज निर्माण रक्षा सलामती उसरंदर तकनीकुन स्टार्टअप सकाफत तहलीम तोड़े आवाम विच में राबतो जड़न केतरन अहम खितन में सहकार जो जायजो वरतो। आखिर में अहम सुर्खियों ते विझंदासीं वरी नजर। गृह वजीर अमित शाह जो नशेदार पदार्थन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सैफ फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और नेताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। पर मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमें जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीत।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 33 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC-C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग वे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रहे हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता के ताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। ભારતે ટેક સિલિકા સમિટમાં એઆઈ ટેકનોલોજીને સશક્ત બનાવવા માટે અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળની પહેલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે નશા મુક્ત ભારત અભિયાન જન ભાગીદારીથી પ્રેરિત એક જન આંદોલન બની ગયું છે। રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર દાન કેસમાં દાખલ કરાયેલી પહેલી એફઆઈઆરમાં ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે 8 લોકોની ધરપકડ કરી। વેનેઝુએલામાં રાહત કાર્ય માટે ભારતે શરૂ કર્યું ખાસ મિશન। વાયુસેનાના 2 વિમાન રાહત સામગ્રી સાથે રવાના। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ રવિવારે આકાશવાણી પર મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશ અને વિદેશના લોકો સાથે પોતાના વિચારો રજૂ કરશે। આજે દેશના વિવિધ ભાગોમાં મોહરમનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। રાજ્યની સરકારી કચેરીઓમાં આજથી વીજ બચત અભિયાનનો પ્રારંભ થયો। મૂળ કચ્છના દિનેશ ત્રિવેદીએ બાંગ્લાદેશમાં ભારતના ઉચ્ચ આયુક્ત તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો। ધોળકિયા ફાઉન્ડેશન અને જલધારા સેવા સંગઠને પ્રકૃતિ પ્રેમી દાતાઓના સત્વારે શહેરના યક્ષ ખાતે 9 એકરમાં જળાશય બનાવાયું। રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોજાયેલો ત્રિદિવસીય પ્રગતિનો પ્રત્યયોત્સવ ગઈકાલે સંપન્ન થયો। કચ્છમાં આંગણવાડીથી લઈને ધોરણ 9 અને 11ના 65,291 બાળકને પ્રવેશ અપાયો। વિશ્વ સંગીત દિવસે કલા વારસો સંસ્થા દ્વારા કચ્છના 11 ગામડામાં પરંપરાગત સંગીત પ્રયાણ યોજાઈ। રાજ્યના ખેડૂતોની વિવિધ પડતર માંગણીઓ અને વીજ કંપની દ્વારા થઈ રહેલા અન્યાય વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા આજે બ્રજવાણીથી દ્વારકા સુધી કિસાન અધિકાર પદયાત્રાનો પ્રારંભ। આંતરરાષ્ટ્રીય માદક પદાર્થ વિરોધી દિવસ નિમિત્તે કચ્છમાં પોલીસ દ્વારા જનજાગૃતિ રેલી અને વોકેથોનનું આયોજન કરાયું અને ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન સાથે વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ગતિવિધિઓ શરૂ। આગામી 7 દિવસ ગુજરાત અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા હેલા વરસાદની શક્યતા। મુખ્ય સમાચાર પૂરા થયા।

0: ने कभी हमारी इस दैवीय स्थिति पर ध्यान नहीं
1: तो स्थिति बता रहे कि अंक नंबर 2, 4, 6, 11, 12, 13 रसोई की कुछ मामूली प्रकृति के इस नाटक जगत में बुलाता है।
0: इस स्वीकृति के साथ ये कटौतियाँ एकांगी है फिर भी मांगी है
1: परिस्थिति के मुद्दे में बदलते हुए आपको उनका पालन करते हुए दृष्टि के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट

0: मैं भी
1: मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मै

आज जिला महिला आप सुन रहे थे मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका। बजट एक दबाव देवी था। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही

सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीतकार है आनंद मिलन और फिल्म का नाम है सुहाग।

0: आप स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पर

0: इसीलिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर प्रस्तुत होती है,
1: कौन से है क्यों भेजा जिसमें ये शकील लगना जख्म क्यों रखाया हूँ पत्थरों को लगा मगर शहर पैदा हुआ था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे भाषण में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जगह दिलों का जम दूरी सोचनी और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल रेडियो स्टेशन का भी दख है मेरे अंदर शहर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सिविलाट के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे हम सिला साहब ने, सब स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: आइए सुने अगला गीत आईफा याग्निक उदित नारायण अमित कुमार और साथियों की आवाजों में समीर के बोलों को संगीत से सवारा है विजू शाह ने। फिल्म का नाम है बड़े मियां छोटे मियां।

प्रमुख कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रमय कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और प्रसन्न सरगतिया की आवाजों में। गीत लिखकर है तेजपाल कौर ने, संगीतकार है अनु मलिक, फिल्म का नाम है

जब भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल युगल रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुभाष शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो भरना क्या थी सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी लाइन लिखता हूँ ऐसा मगर मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन लिखते हैं। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़नी चुनरिया पहनी।
2: लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है निपिन राय कवार ने, संगीत है संदीप चौटाला का।

साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती

और पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रोनक चौहान, किदंबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई

0: गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि

0: कोई कपड़े होगा आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमापार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों के सहयोग की भावना का रूप है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आग्रह व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अनस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर ने बताया फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहे में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के पनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री येजांग डे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत के बढ़ते वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री बंधु अधिकारी ने मृतकों के

0: किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूरा मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मुहर्रम से यह धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गई। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, करायकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चौ तेन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी लेरा को हराया। वह महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे के टोंग सी टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविता ने थाईलैंड की टोन ग्रुप साई हेंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेल्स ने कहा अमरीका और ईरान भविष्य

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बया ये गाना।
1: कुमार साहब कहने को कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झंकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झुमलो झुमलो। आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग झुमलो झुमलो। शेरों का मैं हूँ शेर यार, अरे कोई ना मुझका दलेर प्यार। शेरों का मैं हूँ
2: शेर यार,
1: अरे कोई ना मुझका दलेर
2: प्यार।
1: ये सच सच कहता मैं, झट कह जाता मैं, आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग झुमलो।
0: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श, जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मेस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

अजमेर राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैयाराजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फेलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहाँ से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा

आगे चलकर एले राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहाँ वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैयाराजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैयाराजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैयाराजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिन थई किलम थे, 1982 में कोजू कुवतु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्र। असल में ये फिल्म बालू महेंद्र की तमिल फिल्म मुंदरे

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था आमाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैयाराजा को और यहां से आर बाल्की और इलैयाराजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

आज के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड है। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित

चूंकि इलिया राजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक

के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी तीन संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहे, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि ये हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल नीलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायने में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड है। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे नहीं सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी नहीं करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

प्रदेश की सुरीली धड़कन बुलंद घाटी पर 6 वीं टीकर हासिल हुआ आपके दोस्त है शुभा। दिल का सौदा है ऐसा सौदा, जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न होता है मोल भाव न कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलते हैं चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल करे बस कुछ

जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ में आया है। हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी न गवाया है। जितना दिया पास से अपने लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सोया हुआ खड़ा और दूसरी ओर निगाहों में भी ठंडक आई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहर

सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के सौदेबाजी में हमने पाया प्यार कदम, दुनिया के भीड़ में मिला एक हम कदम। तुम मिली गया तो क्यों मैं तय करूँ ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिलाने कदम से कदम। कभी गलियां खिले तो कभी गलियां मिले, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या हूँ। देख ले साथी दिल के सौदेबाजी में संभाल लेना जो

भरोसा तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपने कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक।

जिंदगी के सफर में चल रहे तो तन्हा ही है, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती है जो मुलाकातें। जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को

0: Shabri, kalinyo, agaya hai mauka, sakhiyon ko apni baat kehne ka. Sakhiyon phone par humse bataye, apne dil ki baat, aur farmaish kare, apne pasandida gaano ki. Sakhiyon ke liye, sakhiyon dwara prastut kiya jaane wala, aap sabka pasandida karyakram, Hello Saheli. इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ बहुत भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: अच्छा, गुड नाइट।

0: सशक्त बनाने के लिए
1: समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, मार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस डेट बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए

کنید رکشه آسوب شد در دیسی رانی به چطور در پایده اونی کنید که بارتون بده این یاپک آرتیک آر یاپک سمچوتا دو دیشو که سرگرهی که پر کنید هی ویزوی بی آئی دو شکتی شانی بھوکمپو می نتکو کسی که بڑھ کر 589 ہو گئی ہے 3000 سے ادھک لوگ گھائل ہوئے ہیں कार्यवाहक राष्ट्रपति डेनिसी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों के सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्य में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक रह सामग्री दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सैन्य के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों के T20 क्रिकेट संघ्या के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहली बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।